0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं ताकि जीवन के लिए अति आवश्यक तत्व जल का सही और टिकाऊ प्रबंधन हो सके तथा सभी के लिए इसकी आपूर्ति समान रूप से हो सके। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है रविवारीय आराधना विधि चिंतन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का, सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की और सिस्टर अनुग्रह मिंज।

0: श्रोताओं, मानव अपने स्वभाव में चीज वस्तुओं को संग्रहित करने की चाह रखता है। वह अपने लिए विभिन्न चीजों को जमा करना चाहता है, चाहे वह जन धन और ज्ञान ही क्यों ना हो। वह उन्हें अपने में पकड़े रखना चाहता है, क्योंकि उनके द्वारा उसे एक तरह से खुशी और आत्म संतुष्टि की अनुभूति होती है। लेकिन पकड़े रहने में हमें जितनी ताकत और शक्ति व्यय करनी पड़ती है, शायद उसका उपयोग हम कुछ और सकारात्मक चीजों के निर्माण में कर सकते हैं। श्रोताओं, वर्ष के 24वें सामान्य रविवार आराधना विधि चिंतन हेतु लिए गए पाठों में हमारे लिए छोड़ने की विषय वस्तु का उल्लेख किया गया है। आज प्रभु हमें अपनी पकड़ को ढीली करने अर्थात हमें क्षमा करने का निमंत्रण देते हैं। आइए हम सुसमाचार में प्रभु वचनों का श्रवण करते हुए अपने में इस बात पर विचार करें कि वे कौन कौन से लोग हैं जिन्हें हमें क्षमा करने की जरूरत है। वे कौन सी बातें हैं जिनके द्वारा हमने स्वयं को बंधक बनाए हुए है, जिन्हें हमें छोड़ने की आवश्यकता है। क्यों हमें क्षमा करने में कठिनाई का अनुभव होता है?
1: पेत्रुस ने पास आकर यीशु से कहा, प्रभु, यदि मेरा भाई मेरे विरुद्ध अपराध करता जाए तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? 7 बार तक? यीशु उत्तर दिया, मैं तुमसे नहीं कहता 7 बार तक, बल्कि 70 × 7 बार तक। यही कारण है कि स्वर्ग का राज्य उस राजा के सदृश है जो अपने सेवकों से लेखा चाहता था। जब वह लेखा लेने लगा तो उसका लाखों रुपये का एक कर्जदार उसके सामने पेश किया गया। अदा करने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था, इसलिए स्वामी ने आदेश दिया उसे, उसकी पत्नी, उसके बच्चों और उसकी सारी जायदाद को बेच दिया जाए और ऋण अदा कर लिया जाए। इस पर वह सेवक पैरों पर गिरकर अनुनय विनय करने लगा, मुझे समय दीजिए और मैं आपको सब कुछ चुका दूंगा। उस सेवक के स्वामी को तरस आया और उसने उसे जाने दिया और उसका कर्ज माफ कर दिया।
0: श्रोताओं, सुसमाचार के सुमधुर वचन हमारे हृदय की कठोरता और कटुता को हमसे दूर करे, जो हमारे संबंधों में खटास का कारण बनती है, जिससे हम अपने को, अपने पड़ोसियों और अपने निकट रहने वालों की गलतियों और दोषों को क्षमा कर सकें। श्रोताओं, प्रवक्ता ग्रंथ से लिया गया आज का पहला पाठ हमें सीधे तौर पर विद्वेष और क्रोध को घृणित घोषित करता है। किसी के प्रति हमारे मन और हृदय में द्वेष और क्रोध इसलिए उत्पन्न होते हैं क्योंकि हम उनके कार्यों और व्यवहार से अपने को आहत या चोटिल पाते हैं। किसी भी व्यक्ति के द्वारा किया गया व्यवहार और कार्य जो हमारे आत्म सम्मान को ठेस पहुंचाता है तो हम अपने को घायल होता पाते हैं। अतः यह हमारे आंतरिक चोट की ओर हमारा ध्यान आकर्षित कराता है, जो बहुधा हमारे लिए बाह्य चोटों से अधिक जख्मदायक और कष्टपूर्ण होते हैं। हमारे शरीर के बाह्य जख्म और घाव तो मलहम पट्टी और दवाई के द्वारा ठीक हो जाते हैं, लेकिन हमारे हृदय के भीतर चोट और घाव का उपचार हमारे लिए एक विशेष देख रेख की मांग करती है। हमारे आंतरिक चोट जहां हम अपने स्वाभिमान को घायल होता पाते हैं, हम उन व्यक्तियों को अपने में पकड़ लेते हैं जिन्होंने हमें चोट पहुंचाया है। यही कारण है उन व्यक्तियों की बातें, घटनाएं और उनका सारा व्यक्तित्व हमें परेशान करता है। अतः आंतरिक चोट से उबरना हमारे लिए अधिक मुश्किल और समय व्ययी होता है। यह हमें न सिर्फ अपने को बल्कि उस व्यक्ति की परिस्थिति को समझते हुए उसे पूरी तरह क्षमा करने की मांग करता है। श्रोताओं, रोमियों के नाम संत पौलुस के पत्र से लिया गया आज का दूसरा पाठ पहले पाठ की विषय वस्तु को एक दूसरे रूप में प्रस्तुत करता है, जहां हम अपने लिए नहीं बल्कि मसीह के लिए जीने हेतु बुलाए गए हैं, क्योंकि मसीह ने हमें अपने लिए बनाया और जीवन दिया है। हम उनके लिए जीते और उनके लिए मरते हैं। अतः हमें उनके मनोभावों को धारण करने को कहा जाता है, अर्थात दूसरों को क्षमा करना, जैसे कि उन्होंने स्वयं घोर दुख में होते हुए भी दूसरों को, अपने शत्रुओं को, अपने दुख देने वालों को क्षमा प्रदान किया। श्रोताओं, आज के सुसमाचार में हमने पेत्रुस के पूछे जाने पर कि मैं अपने भाई को कितनी बार क्षमा करूं, यीशु उसे कहते हैं कि 7 बार नहीं बल्कि 70 × 7 बार तक। हमारे लिए किसी को एक बार क्षमा करने में कितनी कठिनाई होती है, और यीशु हमें कहते हैं कि हम अपने गुनाहगारों को 70 × 7 बार क्षमा करें। क्या यह मानवीय स्वभाव में हमारी ओर से संभव है या हमारे लिए असंभव लगता है? लेकिन ईश्वर की ओर से यह सदैव संभव है, और वे सदैव हमारे संग ऐसा करते हैं। हम अपने जीवन में कितनी बार एक ही पाप में नहीं चाहते हुए भी गिर जाते हैं, लेकिन मुक्तिदाता यीशु हमारे पापों का हिसाब नहीं रखते, बल्कि वे हमें सदैव माफ करते और अपने जीवन में आगे बढ़ने को प्रोत्साहित करते हैं। और क्योंकि वे हमें अपने पापों से मुक्त करते हैं, वे हमसे भी यही चाह रखते हैं कि हम अपने गुनाहगारों को क्षमा करें। श्रोताओं, जब हम दूसरों को क्षमा करते हैं तो हम अपने को उस बोझ से हल्का करते हैं जो माफी ना देने के कारण हम में भार स्वरूप व्याप्त रहता है। दूसरों को क्षमा करने के द्वारा हम ना सिर्फ अपने में एक दिव्य शांति और हल्केपन का अनुभव करते हैं, बल्कि हम दूसरों के लिए शांति के वाहक बनते हैं। और यही कारण है हम इस कथन को अपने में सार्थक होता पाते हैं। गलती करना मानवीय है, अपितु क्षमा देना दैवीय। आइए हम पवित्र आत्मा से निवेदन करें कि वे हमें अपनी कृपा और शक्ति से भर दें, जिससे हम दूसरों को क्षमा करने के योग्य बन सकें, क्योंकि हमारा ऐसा करना हमें ईश्वरीय दिव्य शक्ति और कृपाओं से पोषित करता है।

0: आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। पोप लियो 14वें ने शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय बेनेडिक्टाइन संघ की संगोष्ठी के प्रतिभागियों से मुलाकात की। संगोष्ठी दुनिया भर के मठवासियों के प्रतिनिधियों को एक साथ लाता है। संत पापा ने वैटिकन में उनसे मुलाकात कर कहा, साथ मिलकर आगे बढ़ने का यह सफर और भी जरूरी है, क्योंकि इसका मकसद एक आध्यात्मिक सिनोडालिटी के द्वारा पूरी दुनिया में बेनेडिक्टाइन के करिश्मे को जीना और आगे बढ़ाना है, जो हर इंसान की खासियत को सभी के लिए एक खजाना बनाती है। उन्होंने कहा, संत बेनेडिक्ट के बारे में बात करते हुए पोप फ्रांसिस ने प्यार की असीम मिठास से भरे दिल के महत्व पर जोर दिया था। उन्होंने कहा, एक दिल कृपा का संदेश वाहक होता है, क्योंकि इसकी जड़ें इतनी मजबूत होती हैं कि पेड़ अच्छी तरह बढ़ता, समय की मार झेलता और सुसमाचार के अच्छे फल देता है। पोप लियो ने अपने ग्रीष्म अवकाश के दौरान सुबियाको और मोंते कैसिनो मठों के दौरे की याद की, जहां संत बेनेडिक्ट ने मठ की स्थापना की। संत पापा ने कहा, जब मैं उन पवित्र जगहों की शांति और एकांत के बारे सोचता हूँ और आज आपको यहाँ देखता हूँ, तो मैं यह देखकर खुश हुए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि जैसा कि सुसमाचार कहता है, यह छोटे से बीज से एक बड़ा पेड़ बन गया है। सच में एक अंगूर का बाग फैल गया है और धरती को भर दिया है, और उसने बहुत से फल दिए हैं, क्योंकि यह प्रभु में गहराई से जुड़ा है। इसलिए पोप ने कहा, इतने सारे अलग अलग देशों के मठवासियों और धर्म बहनों के रूप में आप जो कोशिशें कर रहे हैं कि मसीह में और भी गहराई से जुड़ें और पूरी धरती पर उनके जीवित और प्रार्थना करने वाले गवाह बने, वे एक महान चिन्ह और भविष्यवाणी के वरदान हैं। इस बारे में संत पापा पॉल षष्ठम ने संत बेनेडिक्ट और उनके शिष्यों को उन लोगों के तौर पर बताया जिन्होंने प्रार्थना, पढ़ाई और काम के जरिए क्रूस, किताब और हल के साथ सभ्यता और आध्यात्मिक मूल्यों को फैलाया। इस तरह उन्होंने अलग अलग लोगों और देशों के बीच एकता बनाई, जिसे संत अगस्टीन ने पुष्ट किया है, जो पूरी खूबसूरती का एक उदाहरण एवं मॉडल है। संत पापा ने आगे कहा कि इस मायने में यह वास्तव में सराहनीय है कि वे रोम और दूसरी जगहों पर डिजिटल टूल्स के जरिए एक ऐसे प्रोजेक्ट में लगे हुए हैं, जिससे खासतौर पर बेनेडिक्टाइन मठवासी धर्म बहनों को नए प्रशिक्षण के मौके मिले। अंत में संत पापा ने उनकी समर्पित प्रतिबद्धता को जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया और उन्हें अपना आशीर्वाद दिया।
1: शनिवार 12 सितंबर को वाटिकन के कुंचिस्तोरो भवन में संत पापा लियो 14वें ने लैटिन अमेरिका के लिए पोंटिफिकल आयोग द्वारा आयोजित की गई CELAM और USCCB की फ्रतेलितुति मीटिंग के प्रतिभागियों से मुलाकात की। संत पापा ने अभिवादन करते हुए कहा कि वे लैटिन अमेरिका और कैरेबियन धर्माध्यक्षीय सम्मेलन, अमेजन एक्लेसियन कॉन्फ्रेंस और अमेरिकी कैथोलिक धर्माध्यक्षीय सम्मेलन के अधिकारियों का दिल से स्वागत करते हैं और उनकी उस लगन की तारीफ करते हैं जिसमें उन्होंने लैटिन अमेरिका के पोंटिफिकल आयोग के साथ मिलकर 5 वर्षों तक उत्तर दक्षिण सामाजिक पर्यावरणीय संवाद का यह सफर जारी रखा है। संत पापा ने कहा कि यह मीटिंग खास तौर पर दिलचस्प है, क्योंकि इसमें कई तरह के सेक्टर शामिल हैं। इनमें शामिल होने वाले कई लोग सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन के लिए जरूरी क्षेत्रों में जिम्मेदारियां निभाते हैं। इसी वजह से बातचीत के लिए यह जगह हमारे आम भविष्य पर असर डालने वाली चुनौतियों का ज्यादा असलियत से सामना करने में हमारी मदद कर सकती है। आगे संत पापा ने कहा कि अपने परमाध्यक्षीय कार्यकाल की शुरुआत में ही कार्डिनल मंडल के साथ मुलाकात में उन्होंने उस यात्रा की कुछ बुनियादी पहलुओं को याद किया था जो विश्वव्यापी कलीसिया दशकों से दूसरी वाटिकन महासभा के नक्शे कदम पर चलते हुए कर रही है। संत पापा ने आज की दुनिया के अलग अलग हिस्सों और वास्तविकताओं के साथ हिम्मत और भरोसे के साथ बातचीत करने की जरूरत पर जोर दिया। संत पापा ने कहा कि यह बातचीत कलीसिया के मिशन का ही हिस्सा है, जिसे यीशु ख्रिस्त से यह आदेश मिला है कि वह सभी लोगों तक सुसमाचार का प्रचार करे और हर युग की असलियत तक इसकी रोशनी पहुंचाए। इसके लिए उसे उन पुरुषों और महिलाओं की असलियत का सामना करना पड़ता है जिनके पास उसे भेजा गया है। गरीबों की देखभाल करने की सुसमाचार की जिम्मेदारी यह भी मांग करती है कि यह नज़र खास तौर पर उन लोगों पर डाली जाए जो सामाजिक, आर्थिक और टेक्नोलॉजिकल बदलावों के नतीजों से सबसे ज्यादा परेशान हैं। संत पापा ने कहा, मुझे खुशी है कि अमेरिका में कलीसिया ने कई क्षेत्रों के बीच सहयोग के लिए उत्तर दक्षिण साझा जिम्मेदारी एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए आपसी मेलजोल और सहयोग का यह मंच तैयार किया है। जब सरकारी संस्थान, बिजनेस, कर्मचारी, विश्वविद्यालय, समुदाय और सामाजिक संगठन आम भलाई के लिए अपनी जानकारी, क्षमता और संसाधनों को साझा करते हैं, तो कलीसिया के सामाजिक सिद्धांत पर आधारित और मेरे पूर्ववर्तियों द्वारा अलग अलग तरीकों से विकसित एक सोच हकीकत का रूप लेती है। समाज में बड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए समाज के अलग अलग क्षेत्रों के बीच साझा जिम्मेदारी, भागीदारी और सहयोग की जरूरत होती है। संत पापा फ्रांसिस ने सामाजिक दोस्ती के बारे में बात करते हुए इसी सोच को जाहिर किया था। अमेरिका पर हुए 11 सितंबर 2001 के हमलों के 25 साल बाद हम उन परमाध्यक्षों की बातों को याद करते हैं जिन्होंने बार बार शांति और मेल मिलाप की अपील की थी। उन्होंने हमें याद दिलाया है कि भयानक से भयानक त्रासदी के बावजूद बुराई और मौत की ही आखिरी जीत नहीं होती। 11 सितंबर 2001 को अमेरिका पर 4 आत्मघाती हमले हुए जिसमें देश के अलग अलग हिस्सों में लगभग 3,000 लोगों की जानें चली गई। उस समय संत पापा जॉन पॉल द्वितीय कास्टेल गंडोल्फो में थे। तब वाटिकन प्रेस ऑफिस के निदेशक ने फोन कर उन्हें इस घटना के बारे में बताया। इस खबर से गहरे सदमे में आए संत पापा तुरंत अपने निजी चैपल में प्रार्थना करने चले गए। इसके बाद उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश को शोक और सहानुभूति जताते हुए एक टेलीग्राम भेजा। संत पापा ने इसे इतिहास का एक काला और दुखद पल बताया। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं ताकि जीवन के लिए अति आवश्यक तत्व जल का सही और टिकाऊ प्रबंधन हो सके तथा सभी के लिए इसकी आपूर्ति समान रूप से हो सके। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है रविवारीय आराधना विधि चिंतन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का, सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की और सिस्टर अनुग्रह मिंज।

0: श्रोताओं, मानव अपने स्वभाव में चीज वस्तुओं को संग्रहित करने की चाह रखता है। वह अपने लिए विभिन्न चीजों को जमा करना चाहता है, चाहे वह जन धन और ज्ञान ही क्यों ना हो। वह उन्हें अपने में पकड़े रखना चाहता है, क्योंकि उनके द्वारा उसे एक तरह से खुशी और आत्मसंतुष्टि की अनुभूति होती है। लेकिन पकड़े रहने में हमें जितनी ताकत और शक्ति व्यय करनी पड़ती है, शायद उसका उपयोग हम कुछ और सकारात्मक चीजों के निर्माण में कर सकते हैं। श्रोताओं, वर्ष के 24वें सामान्य रविवार आराधना विधि चिंतन हेतु लिए गए पाठों में हमारे लिए छोड़ने की विषय वस्तु का उल्लेख किया गया है। आज प्रभु हमें अपनी पकड़ को ढीली करने अर्थात हमें क्षमा करने का निमंत्रण देते हैं। आइए हम सुसमाचार में प्रभु वचनों का श्रवण करते हुए अपने में इस बात पर विचार करें कि वे कौन कौन से लोग हैं जिन्हें हमें क्षमा करने की जरूरत है। वे कौन सी बातें हैं जिनके द्वारा हमने स्वयं को बंधक बनाए हुए है, जिन्हें हमें छोड़ने की आवश्यकता है। क्यों हमें क्षमा करने में कठिनाई का अनुभव होता है?
1: पेत्रुस ने पास आकर यीशु से कहा, प्रभु, यदि मेरा भाई मेरे विरुद्ध अपराध करता जाए तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? 7 बार तक? यीशु उत्तर दिया, मैं तुमसे नहीं कहता 7 बार तक, बल्कि 70 × 7 बार तक। यही कारण है कि स्वर्ग का राज्य उस राजा के सदृश है जो अपने सेवकों से लेखा चाहता था। जब वह लेखा लेने लगा तो उसका लाखों रुपये का एक कर्जदार उसके सामने पेश किया गया। अदा करने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था, इसलिए स्वामी ने आदेश दिया, उसे, उसकी पत्नी, उसके बच्चों और उसकी सारी जायदाद को बेच दिया जाए और ऋण अदा कर लिया जाए। इस पर वह सेवक पैरों पर गिर कर अनुनय विनय करने लगा, मुझे समय दीजिए और मैं आपको सब कुछ चुका दूंगा। उस सेवक के स्वामी को तरस आया और उसने उसे जाने दिया और उसका कर्ज माफ कर दिया।
0: श्रोताओं, सुसमाचार के सुमधुर वचन हमारे हृदय की कठोरता और कटुता को हमसे दूर करे, जो हमारे संबंधों में खटास का कारण बनती है, जिससे हम अपने को, अपने पड़ोसियों और अपने निकट रहने वालों की गलतियों और दोषों को क्षमा कर सकें। श्रोताओं, प्रवक्ता ग्रंथ से लिया गया आज का पहला पाठ हमें सीधे तौर पर विद्वेष और क्रोध को घृणित घोषित करता है। किसी के प्रति हमारे मन और हृदय में द्वेष और क्रोध इसलिए उत्पन्न होते हैं क्योंकि हम उनके कार्यों और व्यवहार से अपने को आहत या चोटिल पाते हैं। किसी भी व्यक्ति के द्वारा किया गया व्यवहार और कार्य जो हमारे आत्म सम्मान को ठेस पहुंचाता है तो हम अपने को घायल होता पाते हैं। अतः यह हमारे आंतरिक चोट की ओर हमारा ध्यान आकर्षित कराता है, जो बहुधा हमारे लिए बाह्य चोटों से अधिक जख्मदायक और कष्टपूर्ण होते हैं। हमारे शरीर के बाह्य जख्म और घाव तो मलहम पट्टी और दवाई के द्वारा ठीक हो जाते हैं, लेकिन हमारे हृदय के भीतर चोट और घाव का उपचार हमारे लिए एक विशेष देख रेख की मांग करती है। हमारे आंतरिक चोट जहां हम अपने स्वाभिमान को घायल होता पाते हैं, हम उन व्यक्तियों को अपने में पकड़ लेते हैं जिन्होंने हमें चोट पहुंचाया है। यही कारण है उन व्यक्तियों की बातें, घटनाएं और उनका सारा व्यक्तित्व हमें परेशान करता है। अतः आंतरिक चोट से उबरना हमारे लिए अधिक मुश्किल और समय व्ययी होता है। यह हमें न सिर्फ अपने को बल्कि उस व्यक्ति की परिस्थिति को समझते हुए उसे पूरी तरह क्षमा करने की मांग करता है। श्रोताओं, रोमियों के नाम संत पौलुस के पत्र से लिया गया आज का दूसरा पाठ पहले पाठ की विषय वस्तु को एक दूसरे रूप में प्रस्तुत करता है, जहां हम अपने लिए नहीं बल्कि मसीह के लिए जीने हेतु बुलाए गए हैं, क्योंकि मसीह ने हमें अपने लिए बनाया और जीवन दिया है। हम उनके लिए जीते और उनके लिए मरते हैं। अतः हमें उनके मनोभावों को धारण करने को कहा जाता है, अर्थात दूसरों को क्षमा करना, जैसे कि उन्होंने स्वयं घोर दुख में होते हुए भी दूसरों को, अपने शत्रुओं को, अपने दुख देने वालों को क्षमा प्रदान किया। श्रोताओं, आज के सुसमाचार में हमने पेत्रुस के पूछे जाने पर कि मैं अपने भाई को कितनी बार क्षमा करूं, यीशु उसे कहते हैं कि 7 बार नहीं बल्कि 70 × 7 बार तक। हमारे लिए किसी को एक बार क्षमा करने में कितनी कठिनाई होती है, और यीशु हमें कहते हैं कि हम अपने गुनाहगारों को 70 × 7 बार क्षमा करें। क्या यह मानवीय स्वभाव में हमारी ओर से संभव है या हमारे लिए असंभव लगता है? लेकिन ईश्वर की ओर से यह सदैव संभव है, और वे सदैव हमारे संग ऐसा करते हैं। हम अपने जीवन में कितनी बार एक ही पाप में नहीं चाहते हुए भी गिर जाते हैं, लेकिन मुक्तिदाता यीशु हमारे पापों का हिसाब नहीं रखते, बल्कि वे हमें सदैव माफ करते और अपने जीवन में आगे बढ़ने को प्रोत्साहित करते हैं। और क्योंकि वे हमें अपने पापों से मुक्त करते हैं, वे हमसे भी यही चाह रखते हैं कि हम अपने गुनाहगारों को क्षमा करें। श्रोताओं, जब हम दूसरों को क्षमा करते हैं तो हम अपने को उस बोझ से हल्का करते हैं जो माफी ना देने के कारण हम में भार स्वरूप व्याप्त रहता है। दूसरों को क्षमा करने के द्वारा हम ना सिर्फ अपने में एक दिव्य शांति और हल्केपन का अनुभव करते हैं, बल्कि हम दूसरों के लिए शांति के वाहक बनते हैं। और यही कारण है हम इस कथन को अपने में सार्थक होता पाते हैं। गलती करना मानवीय है, अपितु क्षमा देना दैवीय। आइए हम पवित्र आत्मा से निवेदन करें कि वे हमें अपनी कृपा और शक्ति से भर दें, जिससे हम दूसरों को क्षमा करने के योग्य बन सकें, क्योंकि हमारा ऐसा करना हमें ईश्वरीय दिव्य शक्ति और कृपाओं से पोषित करता है।

0: आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। पोप लियो 14वें ने शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय बेनेडिक्टाइन संघ की संगोष्ठी के प्रतिभागियों से मुलाकात की। संगोष्ठी दुनिया भर के मठवासियों के प्रतिनिधियों को एक साथ लाता है। संत पापा ने वैटिकन में उनसे मुलाकात कर कहा, साथ मिलकर आगे बढ़ने का यह सफर और भी जरूरी है, क्योंकि इसका मकसद एक आध्यात्मिक सिनोडालिटी के द्वारा पूरी दुनिया में बेनेडिक्टाइन के करिश्मे को जीना और आगे बढ़ाना है, जो हर इंसान की खासियत को सभी के लिए एक खजाना बनाती है। उन्होंने कहा, संत बेनेडिक्ट के बारे में बात करते हुए पोप फ्रांसिस ने प्यार की असीम मिठास से भरे दिल के महत्व पर जोर दिया था। उन्होंने कहा, एक दिल कृपा का संदेश वाहक होता है, क्योंकि इसकी जड़ें इतनी मजबूत होती हैं कि पेड़ अच्छी तरह बढ़ता, समय की मार झेलता और सुसमाचार के अच्छे फल देता है। पोप लियो ने अपने ग्रीष्म अवकाश के दौरान सुबियाको और मोंते कैसिनो मठों के दौरे की याद की, जहां संत बेनेडिक्ट ने मठ की स्थापना की। संत पापा ने कहा, जब मैं उन पवित्र जगहों की शांति और एकांत के बारे सोचता हूँ और आज आपको यहाँ देखता हूँ, तो मैं यह देखकर खुश हुए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि जैसा कि सुसमाचार कहता है, यह छोटे से बीज से एक बड़ा पेड़ बन गया है, सच में एक अंगूर का बाग फैल गया है और धरती को भर दिया है, और उसने बहुत से फल दिए हैं, क्योंकि यह प्रभु में गहराई से जुड़ा है। इसलिए पोप ने कहा, इतने सारे अलग अलग देशों के मठवासियों और धर्म बहनों के रूप में आप जो कोशिशें कर रहे हैं कि मसीह में और भी गहराई से जुड़ें और पूरी धरती पर उनके जीवित और प्रार्थना करने वाले गवाह बने, वे एक महान चिन्ह और भविष्यवाणी के वरदान हैं। इस बारे में संत पापा पॉल षष्ठम ने संत बेनेडिक्ट और उनके शिष्यों को उन लोगों के तौर पर बताया, जिन्होंने प्रार्थना, पढ़ाई और काम के जरिए क्रूस, किताब और हल के साथ सभ्यता और आध्यात्मिक मूल्यों को फैलाया। इस तरह उन्होंने अलग अलग लोगों और देशों के बीच एकता बनाई, जिसे संत अगस्टीन ने पुष्ट किया है, जो पूरी खूबसूरती का एक उदाहरण एवं मॉडल है। संत पापा ने आगे कहा कि इस मायने में यह वास्तव में सराहनीय है कि वे रोम और दूसरी जगहों पर डिजिटल टूल्स के जरिए एक ऐसे प्रोजेक्ट में लगे हुए हैं, जिससे खासतौर पर बेनेडिक्टाइन मठवासी धर्म बहनों को नए प्रशिक्षण के मौके मिले। अंत में संत पापा ने उनकी समर्पित प्रतिबद्धता को जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया और उन्हें अपना आशीर्वाद दिया।
1: शनिवार 12 सितंबर को वाटिकन के कुंचिस्तोरो भवन में संत पापा लियो 14वें ने लैटिन अमेरिका के लिए पोंटिफिकल आयोग द्वारा आयोजित की गई CELAM और USCCB की फ्रातेलितुति मीटिंग के प्रतिभागियों से मुलाकात की। संत पापा ने अभिवादन करते हुए कहा कि वे लैटिन अमेरिका और कैरेबियन धर्माध्यक्ष सम्मेलन, अमेजन एक्लेसियन कॉन्फ्रेंस और अमेरिकी कैथोलिक धर्माध्यक्ष सम्मेलन के अधिकारियों का दिल से स्वागत करते हैं और उनकी उस लगन की तारीफ करते हैं जिसमें उन्होंने लैटिन अमेरिका के पोंटिफिकल आयोग के साथ मिलकर 5 वर्षों तक उत्तर दक्षिण सामाजिक पर्यावरणीय संवाद का यह सफर जारी रखा है। संत पापा ने कहा कि यह मीटिंग खास तौर पर दिलचस्प है, क्योंकि इसमें कई तरह के सेक्टर शामिल हैं। इनमें शामिल होने वाले कई लोग सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन के लिए जरूरी क्षेत्रों में जिम्मेदारियां निभाते हैं। इसी वजह से बातचीत के लिए यह जगह हमारे आम भविष्य पर असर डालने वाली चुनौतियों का ज्यादा असलियत से सामना करने में हमारी मदद कर सकती है। आगे संत पापा ने कहा कि अपने परमाध्यक्षीय कार्यकाल की शुरुआत में ही कार्डिनल मंडल के साथ मुलाकात में उन्होंने उस यात्रा की कुछ बुनियादी पहलुओं को याद किया था जो विश्वव्यापी कलीसिया दशकों से दूसरी वाटिकन महासभा के नक्शे कदम पर चलते हुए कर रही है। संत पापा ने आज की दुनिया के अलग अलग हिस्सों और वास्तविकताओं के साथ हिम्मत और भरोसे के साथ बातचीत करने की जरूरत पर जोर दिया। संत पापा ने कहा कि यह बातचीत कलीसिया के मिशन का ही हिस्सा है, जिसे यीशु ख्रिस्त से यह आदेश मिला है कि वह सभी लोगों तक सुसमाचार का प्रचार करे और हर युग की असलियत तक इसकी रोशनी पहुंचाए। इसके लिए उसे उन पुरुषों और महिलाओं की असलियत का सामना करना पड़ता है जिनके पास उसे भेजा गया है। गरीबों की देखभाल करने की सुसमाचार की जिम्मेदारी यह भी मांग करती है कि यह नज़र खास तौर पर उन लोगों पर डाली जाए जो सामाजिक, आर्थिक और टेक्नोलॉजिकल बदलावों के नतीजों से सबसे ज्यादा परेशान हैं। संत पापा ने कहा, मुझे खुशी है कि अमेरिका में कलीसिया ने कई क्षेत्रों के बीच सहयोग के लिए उत्तर दक्षिण साझा जिम्मेदारी एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए आपसी मेलजोल और सहयोग का यह मंच तैयार किया है। जब सरकारी संस्थान, बिजनेस, कर्मचारी, विश्वविद्यालय, समुदाय और सामाजिक संगठन आम भलाई के लिए अपनी जानकारी, क्षमता और संसाधनों को साझा करते हैं, तो कलीसिया के सामाजिक सिद्धांत पर आधारित और मेरे पूर्ववर्तियों द्वारा अलग अलग तरीकों से विकसित एक सोच हकीकत का रूप लेती है। समाज में बड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए समाज के अलग अलग क्षेत्रों के बीच साझा जिम्मेदारी, भागीदारी और सहयोग की जरूरत होती है। संत पापा फ्रांसिस ने सामाजिक दोस्ती के बारे में बात करते हुए इसी सोच को जाहिर किया था। अमेरिका पर हुए 11 सितंबर 2001 के हमलों के 25 साल बाद हम उन परमाध्यक्षों की बातों को याद करते हैं जिन्होंने बार बार शांति और मेल मिलाप की अपील की थी। उन्होंने हमें याद दिलाया है कि भयानक से भयानक त्रासदी के बावजूद बुराई और मौत की ही आखिरी जीत नहीं होती। 11 सितंबर 2001 को अमेरिका पर 4 आत्मघाती हमले हुए जिसमें देश के अलग अलग हिस्सों में लगभग 3,000 लोगों की जानें चली गई। उस समय संत पापा जॉन पॉल द्वितीय कास्टेल गंडोल्फो में थे। तब वाटिकन प्रेस ऑफिस के निदेशक ने फोन कर उन्हें इस घटना के बारे में बताया। इस खबर से गहरे सदमे में आए संत पापा तुरंत अपने निजी चैपल में प्रार्थना करने चले गए। इसके बाद उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश को शोक और सहानुभूति जताते हुए एक टेलीग्राम भेजा। संत पापा ने इसे इतिहास का एक काला और दुखद पल बताया। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: उसका चिन्ह,
1: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन।
0: प्रेरितों का धर्म सार,
2: स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर मैं विश्वास रखता हूँ और उसके इकलौते पुत्र हमारे

0: और मृतकों का न्याय करने फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा, पवित्रता की कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन।
1: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
0: हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
0: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे। आमीन।
1: हे मेरे यीशु,
0: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है। आमीन।
1: आनंद के पहला भेद, गैब्रियल दूत माता मरियम को यीशु के जन्म का संदेश देते हैं,
2: मतलब संत पापा और कलीसिया के लिए।
1: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
0: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे

0: कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे। आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है।

0: आनंद के दूसरा वेद। माता मरियम एलिजाबेथ से भेंट करती है।
1: मतलब बीमार से पीड़ित भाई बहनों के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
2: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है।

0: आनंद का तीसरा भेद, हमारे प्रभु जन्मते हैं,
1: मतलब विश्व शांति के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है।

0: आनंद का चौथा भेद, प्रभु यीशु मंदिर में चढ़ाए जाते हैं,
1: मतलब पापियों के मन फिराव
0: हे
1: के लिए।
0: पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
2: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है।

0: आनंद का पांचवा भेद, प्रभु येसु मंदिर में पाए जाते हैं,
1: मतलब शोधक अग्नि की दुखित आत्माओं के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
2: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल येसु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल येसु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल येसु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल येसु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल येसु।
2: हे

0: का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है।

0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।
1: लाउदेतुर येसुस क्रिस्तुस, प्रभु येसु मसीह की जय।
2: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
1: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु येसु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं ताकि जीवन के लिए अति आवश्यक तत्व जल का सही और टिकाऊ प्रबंधन हो सके तथा सभी के लिए इसकी आपूर्ति समान रूप से हो सके, आमीन।
3: नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है रविवार यह कार्यक्रम भक्ति गीत एवं चेतना जागरण। कार्यक्रम प्रस्तोता है सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओं, रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत आज की मिशनरी धर्म बहनों पर एक चर्चा प्रस्तुत कर रहे हैं। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। यीशु के इस आदेश का पालन कलीसिया के आरंभ से ही किया जा रहा है, सबसे पहले प्रेरितों के द्वारा, फिर यूरोपीय देशों के मिशनरियों के द्वारा, और आज भी यह कार्य जारी है। सिस्टर क्रिस्टीना मसीवो याद करती हैं, एक समय था जब यूरोप के मिशनरियों ने सुसमाचार की ज्योति जलाने के लिए समुद्र पार किया। उनकी उपस्थिति ने समुदायों और संस्कृतियों को नया रूप दिया। आज इतिहास ने एक नरम लेकिन प्रभावशाली पन्ना पलट दिया है। जैसे जैसे पश्चिम के कुछ हिस्सों में बुलाहट कम हो रही है, एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और कैरेबियन में मौजूद देशों से कलीसिया उन जगहों पर फिर से सुसमाचार पहुंचाने के लिए मिशनरियों को भेज रही है जहां से कभी उन्हें सुसमाचार भेजा गया था। धर्म बहनें उन जगहों पर चुपचाप कलीसिया को नवीकृत कर रही हैं जहां से विश्वास उनके तटों पर सबसे पहले पहुंचा था। यह मिशन का पूरा चक्र है। यह एक जीता जागता संकेत है कि कलीसिया एक शरीर के रूप में आत्मा द्वारा लगातार नवीकृत होती रहती है। सिस्टर जूली इयाया सीएसएफ बेरगमो के पौत्र परिवार धमसंघ के सदस्य हैं, जो शिक्षा एवं निष्ठापूर्ण उपस्थिति के माध्यम से कलीसिया को बनाए रखने वाली कई धर्म बहनों में से एक है। कोंगो में जन्मे सिस्टर जूली की यात्रा एक साधारण लेकिन मजबूत हाथ से शुरू हुई। 2012 में उन्होंने अपना वतन छोड़ दिया और धम्म संघी जीवन अपनाते हुए ईश्वर के बुलावे के प्रत्युत्तर में अनजान जगह की यात्रा पर निकले। उसके बाद जो कुछ हुआ वह प्रशिक्षण की अवधि थी, जो पहले उसकी अपनी संस्कृति पर आधारित थी और बाद में सीमाओं से परे विस्तारित हुई। उनकी बुलाहट परिपक्व हो गई क्योंकि उसने मिशनरी जीवन को खुले दिल से अपनाया और जहां भी जरूरत थी वहां जाने के लिए तैयार हो गए। निर्धनता, शुद्धता और आज्ञाकारिता का व्रत लेकर सिस्टर जूली ने न केवल आराम त्याग दिया बल्कि हर दिन अपना भविष्य पूरी तरह से ईश्वर के मार्गदर्शन को सौंप दिया। सिस्टर जूली के मिशन के केंद्र में शिक्षा एवं प्रशिक्षण है। वह अपने साथ दो दुनियाओं, अफ्रीका और यूरोप की समृद्धि को समेटे हुए है और सेवा के एक सार्वभौमिक बुलाहट से जुड़ी है। एक गुरु एवं एक प्रशिक्षक के रूप में वह अपने धमसंघ में युवतियों को आत्मपरक करने में उनका साथ देती हैं, उन्हें स्पष्टता, अर्थ एवं हिम्मत पाने में मदद करती हैं। वे स्कूल में छोटे बच्चों की भी देखरेख करती हैं, जहां वे क्लास कमरे के बाहर तक उनका ध्यान रखती हैं। वे बड़े धीरज एवं सावधानी से बच्चों और उनके माता पिताओं का साथ देती हैं। सुनने, अपनी उपस्थिति और व्यक्तिगत साक्ष्य के माध्यम से वे मानवीय और ख्रिस्ते दोनों प्रकार के मूल्यों को अपने धमसंघ के कार्यजम अनुसार प्रकट करती हैं। हर दिन की शुरुआत व्यक्तिगत और सामुदायिक प्रार्थना से करती हैं, जो उनके प्रेरित कार्यों को बल प्रदान करती है। उनका जीवन पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारियों और सामुदायिक जीवन के इर्द गिर्द घूमता है। वे हमेशा अपने धम्म संघ के शिक्षा देने के कार्यक्रम को ध्यान में रखती हैं और उसको प्रेम, धैर्य, कर्तव्य निष्ठा और सच्ची पारिवारिक भावना के साथ करने का प्रयास करती हैं। सिस्टर जूली जोर देकर कहती हैं, बच्चों को प्यार एवं सुरक्षा चाहिए, परिवारों को शैक्षणिक मदद की आवश्यकता है और युवाओं को सच्चाई एवं भरोसे के साथ साथ दिए जाने की जरूरत है। अपनी उपस्थिति से सिस्टर जूली शांति और आत्मविश्वास के लिए जगह बनाती हैं, जहां लोग स्वागत किए गए एवं समर्थन दिए गए महसूस कर सकें। सिस्टर जूली का समर्पण छोटे लेकिन गहरे तरीकों से दिखाई देता है। बच्चे शांतिपूर्ण माहौल में बड़े हो रहे हैं और युवा अपनी बुलाहट यात्रा में हिम्मत पा रहे हैं। वे कहती हैं, ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशियाँ हैं, ये मेरी बुलाहट को मजबूत करती हैं और मुझे याद दिलाती हैं कि ईश्वर हर दिन की सेवा के माध्यम से चुपचाप लेकिन सामर्थ्य के साथ काम करते हैं। हालांकि उनकी मिशनरी यात्रा चुनौतियों से अछूती नहीं है। सांस्कृतिक पृथकता, जिम्मेदारियों का बोझ और रोज की थकान ने उनके इरादों को परखा है। फिर भी उनका मानना है कि हर मुश्किल ने उन्हें ज्यादा विनम्र, धैर्य रखने वाले और खुले दिल की मिशनरी बनाया है। वे अपने धर्मसंघी समुदाय के प्रति आभार व्यक्त करती हैं, जो अपने बीच उनकी उपस्थिति को महत्व देते और सराहना करते हैं। अपने धर्मसंघी जीवन यात्रा पर चिंतन करते हुए सिस्टर जूली पोस्ट करती हैं, विशेषकर बच्चों के बीच खुशी से प्यार एवं सेवा देना है या आत्मदान करना है, छोटे छोटे कार्यों को निष्ठापूर्वक पूरा करना है जो आशा जगाते और भविष्य को आकार देते हैं। सिस्टर जूली के समान बहुत सारे धर्मसंघी बहनों ने अफ्रीका से और दुनिया के अन्य हिस्सों से सांस्कृतिक और भाषाई विविधता को अपनाया है, ताकि ख्रिस्त के सुसमाचार को उन स्थानों तक पहुंचा सकें जहां से कभी मिशनरी उनकी भूमि आए थे। इस तरह अपनी आध्यात्मिक समृद्धि और निष्ठापूर्ण सेवा के द्वारा वे कलीसिया के जीवन को नवीकृत कर रही हैं। यीशु के शिष्य होने के नाते आज यीशु हमें भी सुसमाचार प्रचार करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। क्या हम ख्रिस्त के मूल्यों को अपनाते हुए उनका सुसमाचार प्रचार करने के लिए तैयार हैं? श्रोताओं, रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत आधुनिक मिशनरी धर्म बहनों के बारे सुन रहे थे, जिसको सिस्टर क्रिस्टीना मासिवो CPS ने लिखा है। और अब आए सुनते हैं आज का भक्ति गीत।

आज चेतना जागरण कार्यक्रम में प्रस्तुत है इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र द्वारा तैयार नाटिका दोस्ती। लेखिका है समता बोरेकर। श्रोताओं, माना जाता है कि दोस्ती और प्यार एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। दोस्त वो होता है जो सुख और दुख में साथ दे, जिसे हम अपने दिल की हर बात कह सकते हैं। कभी कभी दोस्ती इतनी गहरी हो जाती है कि वह खून के रिश्ते से भी जरूरी हो जाती है। लड़का और लड़की में भी सबसे पहले दोस्ती होती है, बाद में प्यार हो जाता है। चूंकि हमारे समाज में लड़कियों का लड़कों से बात करना सही माना नहीं जाता है और लड़कियों पर पाबंदियां भी लगाई जाती हैं, शायद यही कारण है कि लड़के और लड़कियों की दोस्ती बहुत ही कम देखने को मिलती है। इन सब के बावजूद भी स्कूल और कॉलेजों में लड़के लड़कियां दोस्ती करते हैं और उसे निभाते भी हैं। दोस्ती में सभी लोग अपने दोस्तों की परवाह करते हैं, उसका ध्यान भी रखते हैं, लेकिन फिर भी लोग लड़के और लड़की की दोस्ती को शक के निगाहों से देखते हैं। प्रस्तुत नाटिका दोस्ती और प्यार को लेकर आपके भ्रम को दूर कर देगी। तो आइए सुनते हैं समता बोरेकर की लिखी नाटिका दोस्ती।

0: ओए वरुण, हाय। सुन, तूने वेकअप सीट देखी?
1: नाइस मूवी।
0: हाँ यार, वेकअप सीट
1: सीट सारे
0: सारे पल
1: पल
0: कहे,
1: कहे, वेकअप
0: वेकअप सीट
1: सीट चल
0: चल
1: कहीं
0: कहीं
1: चले।
0: चले। कैसी बेहुदा लड़की है ये, न शर्म न हया। छी, मैं आज ही अरुण से बात करूंगी। अपने छोरे को संभाल, वरना ये लड़की वरुण को ले उड़ेगी और हम बस हाथ मलते रह जाएंगे। कैसी छिछोरी है, राम राम राम।

0: डिंपल।
1: अरे
0: ओ डिंपल,
1: हाय हाय वरुण हाय।
0: वो तो ठीक है मैडम, मगर आप थी कहाँ इतने दिन?
1: अरे वरुण, वो मेरी मामी जी की थोड़ी तबीयत खराब थी, उनके पास चली गई थी। अरे उनको देखने वाला भी तो कोई नहीं है ना, तुम्हें तो पता
0: ओहो,
1: ही है, मामा के जाने के बाद अकेली रहती हैं बेचारी।
0: ओह अच्छा, अभी कहाँ चल दी?
1: अरे वरुण तू भी चला, अपनी वो शिखा है ना, उसका एक्सीडेंट हो गया है।
0: क्या वो लड़की भी? आई एम श्योर गलती भी उसी की होगी, मगर बेचारा सामने वाला पिट गया होगा।
1: अरे कोई पिटा नहीं, वो ना खुद ही फिसल गई और ना अपने पैर की हड्डी तुड़वा ली।
0: चल
1: चलें।
0: चल चल। शिखा जी, आप गाड़ी चलाने का कष्ट क्यों करती हैं? अजी, आप जैसी सुंदर कन्या के लिए ड्राइवरों की कमी है क्या?
1: वरुण वो बेचारी दर्द में पड़ी है और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। वो देखो उधर बेचारे रोहन और मोहित कैसे उदास से खड़े होकर उसके दर्द की हौसला अफजाई कर रहे हैं।
0: नहीं डिंपल, बात यह है कि एग्जाम सर पर हैं और शिखा की प्रैक्टिकल फाइल भी कंप्लीट नहीं हुई है।
1: अरे मोहित, उसमें परेशान होने की क्या बात है यार, अपन सब है तो मिलकर पूरा कर देंगे। अच्छा सुनो, अब ये ना बुद्धुओं जैसी शक्लें बनाना बंद करो। वो तो देखो तुम्हें देखकर ना बेचारी शिखा की शक्ल पर 12 बजे हुए हैं। तुम दोनों यहाँ ऐसे ही टंगे रहे ना तो बेचारी कभी डिस्चार्ज ही नहीं होगी। अब चलो चलो यहाँ से।
0: डिंपल, काम था यार,
1: हाँ बोल ना मोहित।
0: वो रूम का किराया देना था। पापा का मनी ऑर्डर अभी तक नहीं आया, तो कुछ मदद।
1: अच्छा सुन, तू ना टेंशन मत ले, अपन ना कुछ करते
2: हाय
1: हैं।
2: हाय, ये तो वही लड़की है, डिंपल। किस लड़की के साथ खड़ी है ये? अरे उसके कंधे पर हाथ रख के खड़ी है। राम राम, मैं तो आज ही वरुण की अच्छी खबर लूंगी। अगर फिर ये लड़की घर आई ना तो टांगे दौड़ के रख दूंगी वरुण की।
0: हाँ मौसी, अरे क्या हुआ, इतनी जोर से ये क्यों चिल्ला रही हो? मैं कोई बहरा थोड़ी हूँ।
2: हाँ, बहरा नहीं है मगर अंधा जरूर हो गया है उस छोकरी के प्यार में, तभी तो तुझे उसका असली रूप नजर नहीं आ रहा।
0: हैं, ये क्या बोल रही हो? अरे छोकरी, कौन सी छोकरी, कौन सा प्यार?
2: ऐसा भोला भी मत बन, वही डिंपल। राम राम, ऐसी बेशरम तो मैंने न देखी न सुनी। यूं तो तेरे आगे पीछे घूमती है और तेरे पीठ पीछे। राम राम, मैंने किसी और लड़के के साथ देखा उसको।
0: हे भगवान, मौसी मौसी, डिंपल मेरी दोस्त है पहली बात, दूसरी ये कि वो हमारी क्लास में सभी की दोस्त है, क्योंकि वह बहुत अच्छी है और पढ़ाई में भी बड़ी होशियार है, समझी तुम?
2: अरे कैसा लड़का है, मुझे समझाने चला है? तू तो जब देख डिंपल डिंपल करता है वो, क्या मुझे बेवकूफ समझता है? तेरी उम्र में।
0: हाँ हाँ आपकी उम्र की बात दूसरी थी मौसी, मगर अब वो जमाना नहीं रहा। एक लड़का और एक लड़की अच्छे दोस्त भी तो हो सकते हैं, लड़के और लड़की में बस एक ही रिश्ता नहीं होता मौसी।
2: तेरी अकल पर तो उसका जादू चल गया है। पता है आज मैंने उसे सिटी हॉस्पिटल के बाहर एक लड़के के साथ देखा। राम राम, कैसी बेशर्मी से उसके कंधे पर हाथ रख के बात कर रही थी वो।
0: मौसी, बात कुछ और भी तो हो सकती है ना, हो सकता है वो लड़का किसी मुसीबत में हो और डिंपल से मदद
2: तुझे
0: मांग।
2: तो कुछ भी कहना फिजूल है। देख वरुण, तू उस लड़की से मेलजोल बंद कर वरना।
0: तुम ही संभालो, मैं जा रहा हूं।
2: अरे वरुण सुन।

0: बचाओ।
1: अरे अरे अरे अरे अरे मोहित, अरे गाड़ी तो रुक, देख तो देख तो, एक्सीडेंट हो गया। अरे अरे अरे
0: हे
1: अरे अरे मोहित, अरे ये तो
0: भगवान,
1: वरुण
0: हे
1: की मौसी है।
0: भगवान
1: उठा उठा उठा
0: बचा।
1: उठा।
2: हाँ अभी उठाता हूँ।
1: हेलो हेलो,
0: हाय
1: एम्बुलेंस
0: राम।
1: जल्दी आइए, यहाँ एक्सीडेंट हो गया है।
0: अरे मर गई,
1: मौसी मौसी घबराओ नहीं, अभी सब
0: हाय
1: ठीक हो
0: राम।
1: जाएगा। मोहित अरे कहाँ है, सुन क्लास के लड़कों को
0: अरे
1: फोन तो कर, शायद ब्लड की जरूरत पड़ेगी।

0: कैसी हो मौसी?
1: ठीक हूँ बेटा।
0: देखा मौसी, अगर उस दिन डिंपल समय पर ना आती तो आप तो गई थी। उसने क्लास के लड़कों को तभी फोन करके हॉस्पिटल आने को कह दिया था, इसलिए तुम्हें समय पर खून भी मिल गया। जरा सोचो, अगर उसकी सबसे दोस्ती ना हुई होती तो कोई क्यों आता? सारी रात बैठी रही है तुम्हारे पास सब। कौन लगती हो तुम उसकी, बताओ।
1: हाँ वरुण, मैं भी 3 दिनों से उसे यहाँ पड़ी पड़ी देख रही थी। सभी से बड़ी समझदारी और अपनेपन से बात करती है। तेरे वो दोस्त मोहित और रोहित, वो भी बहुत अच्छे हैं। तुम्हारी दोस्ती तो बेमिसाल है बेटा।
0: तो अब आप समझी दोस्ती के मायने, लड़का और लड़की दोस्त भी होते हैं मौसी।
1: हाँ बेटा, समझ गई। ये नया जमाना है, हम लोगों को समझने में थोड़ा वक्त तो लगेगा।
2: क्या समझा रहे हो वरुण?
0: कुछ नहीं डिंपल, मौसी को गाने का मतलब समझा
2: ओह अच्छा, मेकअप
0: रहा
2: सेट।
0: हूं।

दोस्ती, अभी अभी आपने यह नाटिका सुनी। इसके कलाकार थे अमृता, समता बोरेकर और माइकल होजेस। इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही हमारा आज का प्रसारण समाप्त होता है। नमस्कार।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं ताकि जीवन के लिए अति आवश्यक तत्व जल का सही और टिकाऊ प्रबंधन हो सके तथा सभी के लिए इसकी आपूर्ति समान रूप से हो सके। आमीन।
2: नमस्कार श्रोताओ, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है रविवार कार्यक्रम भक्ति गीत एवं चेतना जागरण। कार्यक्रम प्रस्तोता है सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओ, रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत आज की मिशनरी धर्म बहनों पर एक चर्चा प्रस्तुत कर रहे हैं। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। यीशु के इस आदेश का पालन कलीसिया के आरंभ से ही किया जा रहा है, सबसे पहले प्रेरितों के द्वारा, फिर यूरोपीय देशों के मिशनरियों के द्वारा, और आज भी यह कार्य जारी है। सिस्टर क्रिस्टीना मसीवो याद करती हैं, एक समय था जब यूरोप के मिशनरियों ने सुसमाचार की ज्योति जलाने के लिए समुद्र पार किया। उनकी उपस्थिति ने समुदायों और संस्कृतियों को नया रूप दिया। आज इतिहास ने एक नरम लेकिन प्रभावशाली पन्ना पलट दिया है। जैसे जैसे पश्चिम के कुछ हिस्सों में बुलाहट कम हो रही है, एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और कैरेबियन में मौजूद देशों से कलीसिया उन जगहों पर फिर से सुसमाचार पहुंचाने के लिए मिशनरियों को भेज रही है जहां से कभी उन्हें सुसमाचार भेजा गया था। धर्म बहनें उन जगहों पर चुपचाप कलीसिया को नवीकृत कर रही हैं जहां से विश्वास उनके तटों पर सबसे पहले पहुंचा था। यह मिशन का पूरा चक्र है। यह एक जीता जागता संकेत है कि कलीसिया एक शरीर के रूप में आत्मा द्वारा लगातार नवीकृत होती रहती है। सिस्टर जूली इयाया सीएसएफ बेरगमो के पौत्र परिवार धम्म संघ के सदस्य हैं, जो शिक्षा एवं निष्ठापूर्ण उपस्थिति के माध्यम से कलीसिया को बनाए रखने वाली कई धम्म बहनों में से एक हैं। कोंगो में जन्मे सिस्टर जूली की यात्रा एक साधारण लेकिन मजबूत हाथ से शुरू हुई। 2012 में उन्होंने अपना वतन छोड़ दिया और धम्म संघी जीवन अपनाते हुए ईश्वर के बुलावे के प्रत्युत्तर में अनजान जगह की यात्रा पर निकले। उसके बाद जो कुछ हुआ वह प्रशिक्षण की अवधि थी, जो पहले उसकी अपनी संस्कृति पर आधारित थी और बाद में सीमाओं से परे विस्तारित हुई। उनकी बुलाहट परिपक्व हो गई क्योंकि उसने मिशनरी जीवन को खुले दिल से अपनाया और जहां भी जरूरत थी वहां जाने के लिए तैयार हो गए। निर्धनता, शुद्धता और आज्ञाकारिता का व्रत लेकर सिस्टर जूली ने न केवल आराम त्याग दिया बल्कि हर दिन अपना भविष्य पूरी तरह से ईश्वर के मार्गदर्शन को सौंप दिया। सिस्टर जूली के मिशन के केंद्र में शिक्षा एवं प्रशिक्षण है। वह अपने साथ दो दुनियाओं, अफ्रीका और यूरोप की समृद्धि को समेटे हुए है और सेवा के एक सार्वभौमिक बुलाहट से जुड़ी है। एक गुरु एवं एक प्रशिक्षक के रूप में वह अपने धम्म संघ में युवतियों को आत्मपरक करने में उनका साथ देती हैं, उन्हें स्पष्टता, अर्थ एवं हिम्मत पाने में मदद करती हैं। वे स्कूल में छोटे बच्चों की भी देखरेख करती हैं, जहां वे क्लास कमरे के बाहर तक उनका ध्यान रखती हैं। वे बड़े धीरज एवं सावधानी से बच्चों और उनके माता पिताओं का साथ देती हैं। सुनने, अपनी उपस्थिति और व्यक्तिगत साक्ष्य के माध्यम से वे मानवीय और ख्रिस्ते दोनों प्रकार के मूल्यों को अपने धम्म संघ के कार्यक्रम अनुसार प्रकट करती हैं। हर दिन की शुरुआत व्यक्तिगत और सामुदायिक प्रार्थना से करती हैं, जो उनके प्रेरित कार्यों को बल प्रदान करती है। उनका जीवन पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारियों और सामुदायिक जीवन के इर्द गिर्द घूमता है। वे हमेशा अपने धम्म संघ के शिक्षा देने के कार्यक्रम को ध्यान में रखती हैं और उसको प्रेम, धैर्य, कर्तव्य निष्ठा और सच्ची पारिवारिक भावना के साथ करने का प्रयास करती हैं। सिस्टर जूली जोर देकर कहती हैं, बच्चों को प्यार एवं सुरक्षा चाहिए, परिवारों को शैक्षणिक मदद की आवश्यकता है, और युवाओं को सच्चाई एवं भरोसे के साथ साथ दिए जाने की जरूरत है। अपनी उपस्थिति से सिस्टर जूली शांति और आत्मविश्वास के लिए जगह बनाती हैं, जहां लोग स्वागत किए गए एवं समर्थन दिए गए महसूस कर सकें। सिस्टर जूली का समर्पण छोटे लेकिन गहरे तरीकों से दिखाई देता है। बच्चे शांतिपूर्ण माहौल में बड़े हो रहे हैं और युवा अपनी बुलाहट यात्रा में हिम्मत पा रहे हैं। वे कहती हैं, ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशियां हैं, ये मेरी बुलाहट को मजबूत करती हैं और मुझे याद दिलाती हैं कि ईश्वर हर दिन की सेवा के माध्यम से चुपचाप लेकिन सामर्थ्य के साथ काम करते हैं। हालांकि उनकी मिशनरी यात्रा चुनौतियों से अछूती नहीं है। सांस्कृतिक पृथकता, जिम्मेदारियों का बोझ और रोज की थकान ने उनके इरादों को परखा है। फिर भी उनका मानना है कि हर मुश्किल ने उन्हें ज्यादा विनम्र, धैर्य रखने वाली और खुले दिल की मिशनरी बनाया है। वे अपने धर्मसंघी समुदाय के प्रति आभार व्यक्त करती हैं, जो अपने बीच उनकी उपस्थिति को महत्व देते और सराहना करते हैं। अपने धर्मसंघी जीवन यात्रा पर चिंतन करते हुए सिस्टर जूली पोस्ट करती हैं, विशेषकर बच्चों के बीच खुशी से प्यार एवं सेवा देना है या आत्मदान करना है, छोटे छोटे कार्यों को निष्ठापूर्वक पूरा करना है जो आशा जगाते और भविष्य को आकार देते हैं। सिस्टर जूली के समान बहुत सारे धर्मसंघी बहनों ने अफ्रीका से और दुनिया के अन्य हिस्सों से सांस्कृतिक और भाषाई विविधता को अपनाया है, ताकि ख्रिस्त के सुसमाचार को उन स्थानों तक पहुंचा सकें जहां से कभी मिशनरी उनकी भूमि आए थे। इस तरह अपनी आध्यात्मिक समृद्धि और निष्ठापूर्ण सेवा के द्वारा वे कलीसिया के जीवन को नवीकृत कर रही हैं। यीशु के शिष्य होने के नाते आज यीशु हमें भी सुसमाचार प्रचार करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। क्या हम ख्रिस्त के मूल्यों को अपनाते हुए उनका सुसमाचार प्रचार करने के लिए तैयार हैं? श्रोताओं, रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत आधुनिक मिशनरी धर्म बहनों के बारे सुन रहे थे, जिसको सिस्टर क्रिस्टीना मासिवो CPS ने लिखा है। और अब आए सुनते हैं आज का भक्ति गीत।

आज चेतना जागरण कार्यक्रम में प्रस्तुत है इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र द्वारा तैयार नाटिका दोस्ती। लेखिका है समता बोरेकर। श्रोताओं, माना जाता है कि दोस्ती और प्यार एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। दोस्त वो होता है जो सुख और दुख में साथ दे, जिसे हम अपने दिल की हर बात कह सकते हैं। कभी कभी दोस्ती इतनी गहरी हो जाती है कि वह खून के रिश्ते से भी जरूरी हो जाती है। लड़का और लड़की में भी सबसे पहले दोस्ती होती है, बाद में प्यार हो जाता है। चूंकि हमारे समाज में लड़कियों का लड़कों से बात करना सही माना नहीं जाता है और लड़कियों पर पाबंदियां भी लगाई जाती हैं, शायद यही कारण है कि लड़के और लड़कियों की दोस्ती बहुत ही कम देखने को मिलती है। इन सब के बावजूद भी स्कूल और कॉलेजों में लड़के लड़कियां दोस्ती करते हैं और उसे निभाते भी हैं। दोस्ती में सभी लोग अपने दोस्तों की परवाह करते हैं, उसका ध्यान भी रखते हैं, लेकिन फिर भी लोग लड़के और लड़की की दोस्ती को शक के निगाहों से देखते हैं। प्रस्तुत नाटिका दोस्ती और प्यार को लेकर आपके भ्रम को दूर कर देगी। तो आइए सुनते हैं समता बोरेकर की लिखी नाटिका दोस्ती।

0: ओए वरुण, हाय। सुन, तूने वेकअप सीट देखी?
1: नाइस मूवी।
0: हाँ यार, वेकअप सीट
1: सीट सारे
0: सारे
1: पल
0: पल
1: कहे,
0: कहे, वेकअप
1: वेकअप सीट
0: सीट चल
1: चल
0: कहीं
1: कहीं
0: चले।
1: चले।
0: कैसी बेहुदा लड़की है ये, न शर्म न हया। छी, मैं आज ही अरुण से बात करूंगी। अपने छोरे को संभाल, वरना ये लड़की वरुण को ले उड़ेगी और हम बस हाथ मलते रह जाएंगे। कैसी छिछोरी है, राम राम राम।

0: डिंपल।
1: अरे
0: ओ डिंपल,
1: हाय हाय वरुण हाय।
0: वो तो ठीक है मैडम, मगर आप थी कहाँ इतने दिन?
1: अरे वरुण, वो मेरी मामी जी की थोड़ी तबीयत खराब थी, उनके पास चली गई थी। अरे उनको देखने वाला भी तो कोई नहीं है ना, तुम्हें तो पता
0: ओहो,
1: ही है, मामा के जाने के बाद अकेली रहती हैं बेचारी।
0: ओह अच्छा, अभी कहाँ चल दी?
1: अरे वरुण तू भी चला, अपनी वो शिखा है ना, उसका एक्सीडेंट हो गया है।
0: क्या वो लड़की भी? आई एम श्योर गलती भी उसी की होगी, मगर बेचारा सामने वाला पिट गया होगा।
1: अरे कोई पिटा नहीं, वो ना खुद ही फिसल गई और ना अपने पैर की हड्डी तुड़वा ली।
0: चल
1: चले
0: चल चल। शिखा जी, आप गाड़ी चलाने का कष्ट क्यों करती हैं? अजी, आप जैसी सुंदर कन्या के लिए ड्राइवरों की कमी है क्या?
1: वरुण, वो बेचारी दर्द में पड़ी है और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। वो देखो उधर, बेचारे रोहन और मोहित कैसे उदास से खड़े होकर उसके दर्द की हौसला अफजाई कर रहे हैं।
0: नहीं डिंपल, बात यह है कि एग्ज़ाम सर पर हैं और शिखा की प्रैक्टिकल फाइल भी कंप्लीट नहीं हुई है।
1: अरे मोहित, उसमें परेशान होने की क्या बात है यार, अपन सब है तो मिलकर पूरा कर देंगे। अच्छा सुनो, अब ये ना बुद्धुओं जैसी शक्लें बनाना बंद करो। वो तो देखो, तुम्हें देखकर ना बेचारी शिखा की शक्ल पर 12 बजे हुए हैं। तुम दोनों यहाँ ऐसे ही टंगे रहे ना, तो वो तो बेचारी कभी डिस्चार्ज ही नहीं होगी। अब चलो चलो यहाँ से।
0: डिंपल, काम था यार,
1: हाँ बोल ना मोहित।
0: वो रूम का किराया देना था। पापा का मनी ऑर्डर अभी तक नहीं आया, तो कुछ मदद।
1: अच्छा सुन, तू ना टेंशन मत ले, अपन ना कुछ करते
2: हाय
1: हैं।
2: हाय, ये तो वही लड़की है, डिंपल। किस लड़की के साथ खड़ी है ये? अरे उसके कंधे पर हाथ रख के खड़ी है। राम राम, मैं तो आज ही वरुण की अच्छी खबर लूंगी। अगर फिर ये लड़की घर आई ना, तो टांगे दौड़ के रख दूंगी वरुण की।
0: हाँ मौसी, अरे क्या हुआ, इतनी जोर से ये क्यों चिल्ला रही हो? मैं कोई बहरा थोड़ी हूँ।
2: हाँ, बहरा नहीं है मगर अंधा जरूर हो गया है उस छोकरी के प्यार में, तभी तो तुझे उसका असली रूप नजर नहीं आ रहा।
0: हैं, ये क्या बोल रही हो? अरे छोकरी, कौन सी छोकरी, कौन सा प्यार?
2: ऐसा भोला भी मत बन, वही डिंपल। राम राम, ऐसी बेशरम तो मैंने न देखी न सुनी। यूं तो तेरे आगे पीछे घूमती है और तेरे पीठ पीछे। राम राम, मैंने किसी और लड़के के साथ देखा उसको।
0: हे भगवान, मौसी मौसी, डिंपल मेरी दोस्त है पहली बात, दूसरी ये कि वो हमारी क्लास में सभी की दोस्त है, क्योंकि वह बहुत अच्छी है और पढ़ाई में भी बड़ी होशियार है, समझी तुम?
2: अरे कैसा लड़का है, मुझे समझाने चला है? तू तो जब देख डिंपल डिंपल करता है वो, क्या मुझे बेवकूफ समझता है? तेरी उम्र में
0: हाँ हाँ आपकी उम्र की बात दूसरी थी मौसी, मगर अब वो ज़माना नहीं रहा। एक लड़का और एक लड़की अच्छे दोस्त भी तो हो सकते हैं, लड़के और लड़की में बस एक ही रिश्ता नहीं होता मौसी।
2: तेरी अकल पर तो उसका जादू चल गया है। पता है, आज मैंने उसे सिटी हॉस्पिटल के बाहर एक लड़के के साथ देखा। राम राम, कैसी बेशर्मी से उसके कंधे पर हाथ रख के बात कर रही थी वो।
0: मौसी, बात कुछ और भी तो हो सकती है ना, हो सकता है वो लड़का किसी मुसीबत में हो और डिंपल से मदद
2: तुझे
0: मांग।
2: तो कुछ भी कहना फिजूल है। देख वरुण, तू उस लड़की से मेलजोल बंद कर, वरना।
0: तुम ही संभालो, मैं जा रहा हूं।
2: अरे वरुण सुन,

0: बचाओ। अरे
1: अरे अरे अरे अरे अरे मोहित, अरे गाड़ी तो रुक, देख तो देख, तो एक्सीडेंट हो गया। अरे अरे अरे अरे अरे मोहित,
0: हे
1: अरे ये तो
0: भगवान,
1: वरुण की मौसी है।
0: हे भगवान
1: उठा उठा उठा
0: बचा।
1: उठा।
2: हाँ अभी उठाता हूँ।
1: हेलो हेलो,
0: हाय
1: एम्बुलेंस
0: राम।
1: जल्दी आइए, यहाँ एक्सीडेंट हो गया है।
0: अरे मर गई,
1: मौसी मौसी घबराओ नहीं, अभी सब
0: हाय
1: ठीक हो
0: राम।
1: जाएगा। मोहित अरे कहाँ है, सुन क्लास के लड़कों को
0: हाँ
1: फोन तो कर, शायद ब्लड की जरूरत पड़ेगी।

0: कैसी हो मौसी?
1: ठीक हूँ बेटा।
0: देखा मौसी, अगर उस दिन डिंपल समय पर ना आती तो आप तो गई थी। उसने क्लास के लड़कों को तभी फोन करके हॉस्पिटल आने को कह दिया था, इसलिए तुम्हें समय पर खून भी मिल गया। ज़रा सोचो, अगर उसकी सबसे दोस्ती ना हुई होती तो कोई क्यों आता? सारी रात बैठी रही है तुम्हारे पास सब। कौन लगती हो तुम उसकी, बताओ।
1: हाँ वरुण, मैं भी 3 दिनों से उसे यहाँ पड़ी पड़ी देख रही थी। सभी से बड़ी समझदारी और अपनेपन से बात करती है। तेरे वो दोस्त मोहित और रोहित, वो भी बहुत अच्छे हैं। तुम्हारी दोस्ती तो बेमिसाल है बेटा।
0: तो अब आप समझी दोस्ती के मायने, लड़का और लड़की दोस्त भी होते हैं मौसी।
1: हाँ बेटा, समझ गई। ये नया जमाना है, हम लोगों को समझने में थोड़ा वक्त तो लगेगा।
2: क्या समझा रहे हो वरुण?
0: कुछ नहीं डिंपल, मौसी को गाने का मतलब समझा रहा
2: ओह अच्छा, वेकअप सेड।
0: हूं।

दोस्ती, अभी अभी आपने यह नाटिका सुनी। इसके कलाकार थे अमृता, समता बोरेकर और माइकल होजेस। इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही हमारा आज का प्रसारण समाप्त होता है। नमस्कार।